मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद, सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं, वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं, अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर वरगा सकीन कोई।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका जा लगातारवी रात भी ईरान ते हमला। दखण ईरान जा शहर बंदर अब्बास बोशेर कशमकेश ए अबू मूसा में धमाका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो चवण है त ईरान ते टी रात भी हमलन जी शुरुआत करे छड़ी है।

अमेरिकी बहरी जहाज के क्रूज मिसाइलन सां निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त कुवैत में अमेरिकी फौजी हंधनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो। आमना हरमुज़ में भंजकड़ी करण ते केतरनि ई जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो। गडि॒यल अरब इमारात जी दिफ़ाई वज़ारत जो चवण आहे त ॿिन ऑयल टैंकर्स ते ॿिन क्रूज मिसाइलनि सां हमिलो कयो वियो आहे। हमले में टैंकर्स हमले जो हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो। 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। वाकियो उमानी इलाइक़े पाणी में पेश आयो आहे। ॿिन्ही टैंकर्स खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो आंदो वियो आहे। जवाबी कार्रवाई जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था। अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण आहे त अॼु वधीक हमलनि जो ऐलान। संदसि चवण आहे त मुफ़ाहिमती यादाश्त नामो आज़माइश हुई। ईरान पासदारी न कई। सेंट्रल ईरान जे कोलांग काज़ाला खे निशानो बणाइण वञी रहिया आहियूं। ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। ईरान ते बमबारीअ खां वधीक नाकाबंदी फ़ाइदेमंद आहे। जल्द आबना हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो आबना हरमुज़ जे ॿीहर नाकाबंदी ऐं आबना हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो बि ऐलान। ट्रंप चयो आहे त नाकाबंदी रुगो ईरान ऐं संदसि ग्राहकनि लाइ हूंदी। ॿियनि मुल्कनि खे आबना हरमुज़ इस्तेमाल करण जी आज़ादी हूंदी। आबना हरमुज़ जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभालींदो। हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। अमेरिकी सेनेट काम जो चवण आहे त 15 जुलाई खां आबना हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। ईरान आबना हरमुज़ जो मुहाफ़िज़ आहे, हमेशा रहंदो। ट्रंप दुरुस्त थो चए त आबना हरमुज़ खां गुज़रण जहाज़नि खे तहफ़ुज़ ऐं सहूलियत फराहम कंदड़ खे मुआवज़ो मिलणु घुर्जे। पर जेको कमर्शियल जहाज़नि खे पुरमन सहूलियत फराहम करे थो, मुआवज़ो हुन खे मिलणु घुर्जे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची जो सोशल मीडिया ते पैगाम। संदसि चवण आहे त फीस 20% घणी आहे। असां शफ़ाफ़ रवैयो इख़्तियार कंदासीं। ईरानी ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर तर्जुमान जो चवण आहे त ईरानी फ़ौज खां राब्तो करण बिना आबना हरमुज़ में अमेरिकी सरगर्मियुनि जी मज़ामत कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, जीएफएम
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252586।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

शौक के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अमरीका ईरान विच में अब नफरमस तां शुरू थियल चकतान खत्म न थी। बिन्ही मुल्कन जे अकबे ते हमला जारी। अमरीकी फौज लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटका मौजिब बौशर, जाफार, जासक, कनार्क, अबू मुसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बहरीन शरायतनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन जेल जफीर हवाई अॾे खे निशानो बणायो वियो। उर्दन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गॾियल अरब इमारतनि मौजिब विच ओभर में ॿिनि बहरी जहाज़नि ते ईरानी हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो ऐं 8 ज़ख़्मी थिया आहिनि।
1: पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हूसी बागिन जे हमले जी मज़म्मत। गडि॒यल क़ौमुनि जे सलामती काउंसिल जे इजलास खे ख़िताब कंदे पाकिस्तान जे नुमाइंदे उस्मान जदून चयो त पाकिस्तान यमन जी ख़ुदमुख़्तियारी, इतिहाद ऐं सलामती जी हिमायत करे थो। ख़िते में वधंदड़ छिकताण जे ख़ात्मे जो वाहिद हल सफ़ारतकारी आहे।
0: कनकोट में लोलाई बिरादरी जे बिंदुनि में झेड़ो, हिकु जणो मारिजी वियो। जगण थाणे जहर में ज़मीन जे मामले तां झेड़े में फायरिंग सबब मुरीद लोलाई मारिजी वियो आहे। कनकोट पुलिस वाकिए वारे हंधि पहुची लाज ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो।
1: कश्मोर वेझो RD 140 वटि BS फीडर खे लॻल घारो 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ ॿुॾी विया। पाणी घरनि में दाख़िल, फसल पाणी हेठि, आपाशी इंतज़ामिया गुम। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। FIR दाख़िल कराए छॾी आहे।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते, वालेकुम। यू आर शोइंग इन टू रेडियो FM 88 और साथ साथ प्यारे से सुहरा मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूची हसी परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे ये देखें आज रुखसार सिंध की आवाज। किसी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टुप्रप सरकूल एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हो बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। आप सुन रहे हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत जारी सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त की बात करेंगे, 11:18 जो कि पाकिस्तान का मियादी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अदर देन एवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। प्रोफेसर खुदा खैरियत मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत मतलब।

रोगी सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैव अ बर्थडे टू यू, और जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मेरे गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आयानु सद बिस्मिल्लाह बोंजोर शाओनी हाउ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है। सलाम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे इसी के साथ, स्टे ट्यून्ड।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लैण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ बुड़ी 331 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: Okay. Very nice. और ये किसका बताया आपने?
1: जफर अली का है.
0: अली जफर का. अच्छा ऐसे बोले ना.
1: अली जफर.
0: ओके जबरदस्त जी. और प्ले कर रहे हैं. किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी मैम सब कुछ करना है. दोस्त खड़ा है मेरे साथ मोहम्मद हमजा अंसारी और शौकत मीरानी और मैं खुद ही हूँ प्रेमी सागर.
0: ओके जी थैंक यू. और ये रहा आप का गाना जो कि हम कर रहे हैं प्ले. सो इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: मजेदार गाना सुना। एक बार फिर से वापस आ चुके हैं जी अपने प्रोग्राम और साथ में सेगमेंट में। तो 03000113488 के ऊपर नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: आप
0: सामल ढेलो
1: बात कर रहा हूँ।
0: आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे ये बताइएगा कि गाना सुनाएंगे?
1: जी जी सुनाऊंगा गाना चला गुल का।
0: ओके सुना दें।

0: 303-0011-3488. Next caller, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लखमीर से हम.
0: हाफिज लखमीर भाई, गाना सुना दें अच्छा सा.
1: गाना सुनाओ.
0: हाँ जी, जल्दी से.
1: ए दिल थे पत्थर जो आठ हिल, ए दबी थी दौड़ा छा कोई संग दिल, दुखन था मुखे खपन कुछ घुराएं तो, दिल में दीदार दी खरात तो घुरा तारू अजाए. ये
0: किसका गाना है? ये
1: मुनर मंतार बोले.
0: ठीक है, किसी को डेडिकेट करना है?
1: आपके सामने डेलुशिया में डेलुवा मता है लून साहब और जवान वन साहब और जो भी सुन रहे हैं मेरे फ्रेंड सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: ओके, सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. ये गाना मैं सर्च कर रही हूँ तो ये गाना मुझे मिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? कुछ और प्ले किया जाए? कुछ और प्ले करें? कुछ और प्ले करते हैं. एंड कुछ और इज द ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम.

Song. अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग कहेंगे किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। जल्दी जल्दी बोलेंगे इसको, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। ठीक है, इस तरीके से गाना गाने के साथ।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

क्योंकि कॉल्स तो यहाँ पे ओके 03000113488 इसके ऊपर और कॉल करने के लिए आप लोग हमारा नंबर डायल कर सकते हैं 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग तो जरूर कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद आप लोग मुझे जी ज्वाइन कर सकते हैं जी और इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त हमें मैसेजेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले मैसेजेस की तरफ आती हूँ क्योंकि अभी हमें काफी ज्यादा टाइम मिला है ठीक है जी तो इस टाइम को हम सही तरीके से मैनेज करते हैं और साथ साथ हम अपना टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बोलो तो माने। आज के बोलो तो माने सेगमेंट में क्या टंग ट्विस्टर है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। वैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जरूर बताया था आपको और एग्जैक्टली बताया था बट दोबारा बताऊंगी हिप्स टर्न लाइक के साथ।

0: don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. ओके जी कॉल्स लेते हैं जी और कॉल्स से पहले जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जिसको हम इंक्लूड करते जाते हैं हमें मैसेज किया है जी हैप्पी गर्ल ने हैप्पी गर्ल लिखते हैं शो सुपर डुपर है अस्सलाम वालेकुम जी ताजी मैंने आपको शो कल से सुना है आपका शो सुपर डुपर है और आप उससे भी ऊपर ओके आप कहती हैं तो मान लेते हैं हैप्पी गर्ल और मेरी बुआ सीमा आपका शो रोजाना सुनती है वो आपकी फैन है अरे वाह क्या बात है जो मेरे फैंस हैं मैं उनकी फैंस हूँ ठीक है और बस उन्हीं की उसके अलावा और किसी की फैन नहीं हूँ मैं ठीक है जो मेरे फैंस हैं मैं सिर्फ उन्हीं की फैंस हूँ अच्छा आज का टंग टेस्टर कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएं कह के दिखाएंगे किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई सो देखते हैं आज का टंग टेस्टर कौन कह पाता है सो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर हेलो
1: सलाम वालेकुम
0: अरे सरदर्द क्या खा के कॉल की है चाय पी थी चाय का कमाल है देख ले चाय ऐसे काम करवा देती है कि कॉल लगवा देती है ना चले इसी बात पे फिर टंग ट्विस्टर कह के दिखा दें
1: आप एक बार रिपीट करें
0: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई
1: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई
0: चल खैर कोई बात नहीं बहुत अच्छी कोशिश थी बहुत अच्छी कोशिश थी और कुछ कहेंगी सरदर्द
1: अच्छा कल बहुत कोशिश की थी आपको कॉल करने की लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी
0: कॉल लग नहीं रही थी अब लग गई
1: जी अब लग गई
0: वैसे
1: यार वाकई में ना इस मासी तो बाई नहीं आती इतनी देर उसकी आवाज में गाने नहीं सुने
0: कौन सी आवाज में गाने
1: मतलब इस मासी तो बाई इतनी दिनों से नहीं आ रही इसकी आवाज में
0: किशोर भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे पता नहीं नाराज हैं क्या बात है क्यों है कैसे है बट यही है लेकिन आ जाएंगे मेरे ख्याल से सुन तो रहे होंगे हाँ सुन रहे होंगे अच्छा

0: can see your body moving.
1: Okay. जी एक और कॉलर लेते हैं और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: मैं किरण बात कर रही हूँ.
1: किरण बात कर रही हैं
2: जी.
1: कहाँ से? ओहो मोरो सिटी से बात कर रही है. प्रोग्राम सुनती है किरण?
2: जी सुन रहे हैं.
1: ओके जबरदस्त. तो मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है? कितने टाइम से मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं?
2: रोजाना सुनते हैं.
1: पहली दफा कॉल लगी है या की ही आज है?
2: नहीं आज मैंने
1: तो कॉल की है. ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेगी?
2: जी
1: तो बोले
2: दोबारा से बता.
1: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई.
2: किंजा ने कागज किनारे किनारे खिसकाई.

0: किनारे किनारे खिंचा, इंद्र ने कागज किनारे किनारे खींच
1: Okay, very nice Kiran. कुछ और कहना है किरण
0: जी? मेरी
1: बोले, किसका सॉन्ग? तेरी खैर मंगदी, चलें जरूर प्ले करेंगे जी. थैंक यू सो मच.

इसी के साथ हम चलेंगे आगे और एक गाना मैं प्ले करूंगी, साथ साथ हम उसे सुनेंगे. लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक अदद बहुत खूबसूरत पोइट्री जो कि मुझे नजर आई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सुनाई जाए. तो सुना दूं क्या?

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज
4: GFM 90.4। कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ 3615525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दौरान मारजी वेल दहशत गर्दन दो अंग वधी 121 थी वयो आहे।
2: अमरीका ईरान विच में अपना हुरमस का शुरू थियल चिकताड़ खत्म न थी। बिन्हीं मुल्कन जा हिक बेदे हमला जारी। अमरीकी फौज लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहरन ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बौशर, जापार, जासिक, कनार्क, अबू मूसा ए बंदरबास ते हमला किया विया आहिनि। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम ए ड्रोन ए मिज़ाइल थाकन खे ऐं बहरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फौज जा अबा अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन जल जफीन हवाई अॾे खे निशानो बणायो वियो। उर्दन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गॾियल अरब इमारतनि मूजिब विच ओभर में ॿिनि बहरी जहाज़नि ते ईरानी हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो, 8 ज़ख़्मी थिया।
1: कराची में पुर मज़ाहमत ते क़त्ल थियल डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शोरे मां गिरफ़्तार। पुलिस सागर ऐं रामचंद खे गिरफ़्तार करे जांच शुरू करे छॾी। मक़तूल आकाश जे मड जूं आख़िरी रस्मूं जारी। वारसनि चयो आहे त आकाश जे आख़िरी रस्मनि बाद केस दाख़िल करायो वेंदो।
2: जगमबाद पुलिस हथां गिरफ़्तार थियल में एजाज जखरानी जो नंढो भाउ आज़ाद जखरानी कराची मुंतकिल। लॻुणे महीने महरूम बाबल खान जखरानी जे नंढे पुट मीर आज़ाद खान जखरानी खे जगमबाद पुलिस सख़्त सिक्योरिटीअ में कराची जे दरख़्शां थाणे ते मुंतकिल कयो। एमएनए मीर एजाज हुसैन जखरानी जे नंढे पुट मीर ज़ेर खान जखरानी जी वफ़ात बाद एजाज हुसैन जखरानी संदसि नंढे भाउ मीर आज़ाद खान जखरानी में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ।
1: कंदकोट में लोलाई बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में सगावती तकरार तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़त्ल। ॻोठ फौजू लोलाई में सगावती तकरार तां धुरिन में झेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में मुरीद लोलाई मारिजी वियो। हिकु ॼणो ज़ख़्मी थियो। राधण भरिसां प्लाट जे तकरार तां घर ॿाहिरां सुतल ॻोठाणो क़त्ल। तालिब कलोड़ो खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़त्ल कयो वियो। खैरपुर नाथन शाह जे ॻोठ आढो खान गाॾाई में हथियार बंदनि हथां नौजवान मोहम्मद बलोच क़त्ल। कारण मालूम न थियो। शक जी बुनियाद ते हिकु ॼणो गिरफ़्तार।
2: सिंध में ज़री पाणी जी खोड़ बरक़रार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुराद वाह में पाणी खोड़ ख़िलाफ़ डीसी आफ़ीस वारो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली भरिसां बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार जो धरणो। मुरादबाद जे पुछड़ ताईं पाणी न पहुचण जो मुतालबो कयो। ख़बर में पई इमामबाद जा जागीरबा में पाणी शदीद खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि कराची बदीम रोड ते धरणो हयो। खैबर वेझो ॻोठ पुनू हिंगोर जे रहवासियुनि सुई कुंदर शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
1: कश्मोर वेझो आरडी 140 वटि बीएस फीडर खे लॻल घारो टे ॾींहं गुज़रण बावजूद बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ पुॼी विया। पाणी घरनि में दाख़िल। फसल पाणी हेठि। आपाशी इंतिज़ामिया गुम। केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज जो चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। एफआईआर दाख़िल कराए छॾी आहे।
2: हफ़्तो वक़्तु कराची भरिसां समुंड में किरी तबाह थियल कार्गो जहाज़ जी मिछाणी वासी को पायलट गायबाना जनाद नवाज़ अदा। ॻोठ ठोड़ा शरीफ़ में को पायलट फैसल महमूद जतोई जी गायबाना जनाद नवाज़ अदा कई वई। को पायलट जनाद में इलाइक़े वासन सियास समाजी माण्हुनि शिरकत कई। शायद पायलट जे वालिद रिटायर्ड कैप्टन नाज़ुमद्दीन जतोई हादसे जी जांच करण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त मुस्तक़बिल में अहिड़नि हादसनि खां बचण लाइ शफ़ाफ़ जांच ज़रूरी आहे।
1: ऐं ब्रिया सिटी भरिसां तेज़ रफ़्तार ट्रालर जे टकर में पोरेत फोत। ट्रालर ड्राइवर फरार। फोती पोरेत जी सुञाणप इक़बाल कलोड़ जे नाले सां कई वई।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़। GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: cream. Glowing Skin Churras, a product by Biocon International Pakistan.
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by
0: Muhammad Ardin Zindagi Ki Lehar GFM 88 Network Sindh Ki Awaaz. It's कौन है
2: अब दर्द को कहें अलविदा
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
2: जी हाँ
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
0: ये ऑइंटमेंट
2: अथरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
0: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है
0: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
0: पट्टों के खिंचाव मुंह

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज
4: है कि जनाब एक इंसान को क्या दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं और जी आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि पता चले कि आप पोस्ट से जो है ना वो वाकई मोहब्बत करते हैं ताकि जितनी भी पोस्ट आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर हम लगाएंगे तो हमें फायदा क्या मिलने वाला है तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है जनाब इस क्रीम को लगाने के बाद आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा मेंटेन रहती है अगर देखा जाए तो आप लोग गोरेपन के चक्कर में अपने चेहरे का ना मतलब थोड़ा हशर नशर कर चुके हैं तो गोरापन बिल्कुल आपको मिलेगा लेकिन गोरापन तो मिलेगा लेकिन साथ साथ आप लोगों के चेहरे के प्रॉब्लम्स भी दूर होते रहेंगे तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है एलोवेरा है मिल्क है और ये सब चीजें मिलकर आप लोगों की हुस्न को बढ़ाएंगे और आप लोगों को एक अच्छा सा ग्लो देंगे तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स अगर आप दूर करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मिल रहा है और व्हाइट एश ब्यूटी सोप के अंदर भी भाई एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क मौजूद है इसी के साथ साथ अगर आप सोप नहीं लगाते हैं आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी मौजूद है तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी है जो कि क्रीमी फेस वॉश है आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे इसी के साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा परेशान आप टीनेजर हैं या फिर आपकी एज चाहे कितनी हो लेकिन ये एक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ते एक नहीं आपका जो है वो जीना हराम कर चुके हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है ओके जी सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वाले फायदे मिलते हैं जैसे कि सबसे पहली बात की अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएंगे तो आप लोगों के सिर्फ एक्नी खत्म नहीं होते बल्कि आपके चेहरे पर कोई भी चोट का निशान है जलने का निशान है कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम है जैसे कि भाई देखा जाए तो आपके चेहरे पर निशानात काफी ज्यादा आ चुके होते हैं रिंकल्स बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा ऐसे चेहरे पर निशानात जमा हो चुके हैं तो जी वो भी खत्म हो जाएंगे जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हाथ लगाने के तरीके कार भी आपको बताते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम का नाम ना लें तो कैसे हो सकता है. तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये जनाब इतना कमाल का प्रोडक्ट है ना कि मैं क्या बताऊं. ये फेयरनेस क्रीम है और मेरा अगर आप कहा माने तो अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ घर का हर एक फर्द जो है ना वो व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है. ये इतना काम का इतना मजे का प्रोडक्ट है. तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि विटामिन्स का जो है ना वो अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिन्स के कैप्सूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपकी खूबसूरती को एनहेंस करेंगे और आपकी खूबसूरती में जो ना वो चार चांद लगा देंगे. तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप मेकअप से बचना चाहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, रेगुलर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको व्हाइट एश लवली क्रीम लगाने की बहुत जरूरत है. आप लाजमी व्हाइट एश लवली क्रीम लगाइएगा. और मजे की बात भी बताऊं तो व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन जो है ना वो भी मिल रही है. ऐसा नहीं कि अब आपको अलग से कोई सनब्लॉक लगाने की जरूरत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाएंगे तो बस काफी होगा, इनफ होगा और आपकी खूबसूरती जो है वो बस बढ़ती रहेगी और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी. क्योंकि आपका जो जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाते हैं और आपके चेहरे पर जो सूरज के खतरनाक असरात आते हैं तो उनसे भी आपको व्हाइट एश लवली क्रीम बचाने वाली, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. तो लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े अंकल आंटियां सब ही व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस्तेमाल कीजिए और जनाब अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए. और लगाने के तरीके कार बिल्कुल जी, आप व्हाइट एश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप अपना फेस वॉश करके फिर इस्तेमाल करेंगे सुबह को हो, दोपहर को, रात को, जब दिल करे. बाकी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, इसे आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे. दो मरतबा लगाइएगा ठीक है, लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा. बाकी बात है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम लगाएगा. सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए अच्छे से, उसके बाद व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर दीजिए. बिल्कुल सही ये फार्मूले अगर आप ट्राई करेंगे, यही तरीके कार अगर आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. तो बिल्कुल सही अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-595. ओके जी, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती को वेलकम कीजिए क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं. और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस निदड़ी कहती है, सलाम अलैकुम स्वीट आशे, वेलकम टू शो. तबियत कैसी, उम्मीदें ठीक ठाक होंगी. मैं भी साथ साथ हूँ. ओके, जानो को वेलकम कहते हैं. मोहम्मद अली खोस हमारे साथ हैं. मोहम्मद अली खोसो भाई आपको वेलकम एंड खुश आमदीद. अयूब भट्टी भी आपके साथ मौजूद हैं, वेलकम हो गया जी. योगी बाबा कहते हैं कैसी हो उम्मीद, ठीक ठाक होंगी. हम तो बढ़िया हैं अल्लाह के करम से, शुक्र पाक का माशाल्लाह जी माशाल्लाह. योगी बाबा आपको वेलकम कहा जाता है. यदि आज से शो में हम भी शामिल होंगे, कोई इश्यू तो नहीं? नहीं नहीं भाई, मुझे तो अच्छा लगा कि आप वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ आदिल कहते हैं आज ये लास्ट में गाना लगाइएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी जी, लास्ट में गाने लगाएंगे जितने भी सैडी हो। आप ऐसा कीजिएगा, लास्ट में जरा मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा जितने भी गाने आपने सैडी वाले बोले। ओके जी, इसी बात पर पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और गाने मेरी लिस्ट में है तो जरा हम साथ साथ गाने भी सुनते रहेंगे ना, गाने का भी मजा लेते हैं ताकि चस आ जाए भाई। अच्छे अच्छे गाने जो मैंने लिस्ट में लगाए हैं तो सुनने तो बंद। और नदरी कहती है हाय भैया वास्तव करना है यहाँ गर्मी कम हो गई है आज कल या ये सच है? थोड़ा थोड़ा फर्क है मुझे।

YT and Shenzi's Skin Beauty Show. चाचा खालिद कहते हैं एक तो और मौका मिलना चाहिए टॉपिक आंसर ना करिए चाचा. ना करिए. ता तो मना कयो हा.

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। साथ साथ ये हमारे साथी मोहम्मद अली खोसो के थे, प्रोग्राम जबरदस्त खूबसूरत से चल रहा है। अयूब और प्रोग्राम को सुन रहा है, बाबल खोसो प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, डिवाइड कर दिया आपने सब लोगों को। भक्त अली सियाल हमारे साथ मौजूद है जनाब, वेलकम करते हैं। डूडी कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा, डूडी बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं। अब्दुल वहीद जो ये हमारे साथ हैं। फहीम कहते हैं टॉपिक मिलना चाहिए, सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा ओके जी, ये हमारे साथ हैं। आदिल लिखते हैं नहीं, हर इंसान को अंधाधुंध दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। बात मौके की नौयत पर है, दूसरा मौका जरूर दो जब गलती अनजाने में हो गई हो, जब सामने वाला दिल से माफी मांगे और अपनी गलती माने, जब वो बदलने के लिए अमल से साबित करे, सिर्फ बातों से नहीं। ऐसे लोग रिश्तों की कदर करते हैं और

दूसरा मौका मत दो। जब कोई जान पूछ कर धोखा दे, इज्जत तोड़े या तकलीफ दे, जब वही गलती बार बार करे और माफी को कमजोरी समझे, जो जब आपको दूसरा मौका देने के बाद भी सुकून की बजाय डर लगे, तो वहाँ हद लगाना खुद से वफादारी है। और कहते हैं दूसरा मौका देना अच्छी बात है, पर अपनी इज्जत और सुकून बेच कर नहीं। माफ करो पर वही जख्म हर बार खाने के लिए हाथ आगे मत करो। कितनी अच्छी आपने देखो बात कर अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, जी मिलना चाहिए।

डीआईजी ऑफिस लाड़काना से आप हमारे साथ ही माय फ्रेंड है अल्लाह बख्श और हसीब रिहान आसिफ रजीब मोहसिन फ्रॉम मिठू दीरो शो वेरी नाइस थैंक यू जी वेलकम करते हैं आप सब भाइयों को और निधि कहती है किस चीज का मौका यानी कि एक इंसान आपके साथ बुरा करे और फिर आए आपकी जिंदगी में और बोले कि मुझे माफ कर दो आइंदा नहीं होगा ऐसा उसे दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं सिंपल सी बात पूछी है ओके जी आप साथ साथ ये भी बताते रहें कि

वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है अपनी जान बोर्ड आप इस्तेमाल करने लगना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे है ना कि बहुत से लोग पहले जानते हैं समझते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ही बने। आप पहले चीजों को जो है ना वो समझने की कोशिश किया करें, उसके बाद आप जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करें, खास तौर पर जब आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो तो

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तो एक ही थी वह तीसरे मौजूद बलोचिस्तान में पाक फौज FC पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दौरान वधिक चार दहशतगर्द मारजी व्या। ऑपरेशन शाबान में मारजी पियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वह। गडियल ऑपरेशन दौरान मारजी पियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वह है।
2: कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो। हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण की तस्दीक। हमले के मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दन डोह जो बेतराफ करे वरतो। पुलिस ऑफिसर सा गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वजीर जियाल लंजार चयो आहे ते रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफगानी ए एक बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स के मास्टर माइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वही। दहशतगर्दन में जानान अब्दुल हादी उमर फारूक ए उस्मान शामिल। दहशतगर्द उस्मान के जख्मी हालत में गिरफ्तार कयो वयो। दहशतगर्दन के अफगानिस्तान का बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुंचायो वयो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ्तार कारी बशीर डोह जो बे एतराफ कयो आहे।
1: अमेरिका ईरान विच में अपना हुरमस से शुरू थियल चिकतान खत्म न थी। बिन्हीं मुल्कन जा एक बे जे थाकन ते मिजाइल हमला जारी। अमरीकी फौज लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहर से बमबारी। सेंट का मौजब शाहबार जासक कनार्क अबू मूसा बंदरबाज से हमला किया गया है। हमलों दौरान ईरान के दिफाई निजाम ड्रोन ए मिजाइल थाकन बहरी सलाहित के निशानों बनाया वो। ईरानी फौज भी अमरीकी अडन से जवाबी वार बहरीन अर्दन में अमरीकी अडन के निशानों बनाया वो। पाकिस्तान इनकलाब मौजब बहरीन में अमरीका के अल जफीर वाले अडे के निशानों बनाया वो है। अपना हुरमस पार कर बिन बेड़न के भी नाकारा बनाया वो है।
2: बिन बहरी जहाजन ते ईरानी हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वो 8 जख्मी थे। गडियल अरब इमारतन के दिफा वाले वजारत मूजिब अबना हरमुज वेझो ईरानी फौज बिन बहरी बेड़न के निशानो बनायो है। हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वो 8 जख्मी में भी 6 भारतीय ए 2 यूक्रेन शहरी शामिल।
1: दहशतगर्द मुल्क के नुकसान पहुंचाने चाहन था। कराची दहशतगर्द के निशाने थे है। रेंजर्स के हमले में मुलिस सब जवाबदार गिरफ्तार थी वह। कराची में मीडिया से गालाइंदे वे वजीर मुराद अली शाह सिंध आर्मी सड़पकारी जो मरकज बणजी रो है। हुकूमत सड़पकार के बेहतर माहौल फराहम करने ला पुरजम है। कणक जखीरो कमरन खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। हुकूमती कार्रवाई सबब अटे के अग में इस्तकाम आयो है।
2: आजाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हथियारबंदन जो रावला कोर्ट में फोर्सिस ए शहरी ते हमलो। एक रेंजर सहलकार शहीद एक जख्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी के हथियारबंदन मतियाल मीरवा में बस अड्डे में रावला कोर्ट भरसा शहरी आबादी ते हमलो कयो। फोर्सिस हमलो रोकण की कोशिश कई ते हथियारबंदन जदीद हथियार सा फायरिंग कई। माहिरन मौजूद पाबंदी मड़ियल तंजीम के हथियारबंद जथन खिलाफ एक्शन अणतर थी वो है।
1: कराची में फुर मजम्मत के कत्ल थियल डॉक्टर आकाश केस का जवाबदार जाम शुरू में गिरफ्तार। पुलिस सागर ए रामचंद के गिरफ्तार कर जांच शुरू कर छी। आकाश के मर्द आखिरी रस्मों जारी। वारसन चवे तो आकाश के आखिरी रस्म बाद केस दाखिल किया वो।
2: जैकमाबाद में पुलिस हथा गिरफ्तार थियल MNA एजाज जखरानी जो नंढो भाव आजाद जखरानी कराची मुंतकिल। अगोड़े MNA मरहूम बाबल खान जखरानी के नंढे पुट मीर आजाद खान जखरानी के जैकमाबाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में कराची के दरख्शां थाने ते मुंतकिल कयो। MNA मीर एजाज हुसैन जखरानी के नंढे पुट मीर जैद खान जखरानी की वफात बाद एजाज हुसैन जखरानी ए संदस नंढे भाव मीर आजाद खान जखरानी में इख्तिलाफ पैदा थिया हुआ।
1: कनकोट में लोलाई बिरादरी के बिंदुन में संगावती तकरार था झेड़ो। एक जणो कतल। गोट फौजो लोलाई में संगावती तकरार तंदुरन में झेड़ो। फायरिंग सबब मुरीद लोलाई मारजी एक जणो जख्मी थी पो। रादण भरसा प्लाट की तकरार था घर बारा सुतल गोठानो तालुब कलड़ो कतल। वारसन से लाश रखी धरण जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो। खैरपुनातन शाह के गोट आटो खान गाड़ी में हथियार बंधन था नौजवान मोहम्मद बलोच कतल। कारण मालूम न थो। एक शक की बुनियाद एक जणो गिरफ्तार।
2: सिंध में ज़रई पानी की खोट बरकरार, मुख्तलिफ़ शहर में मुज़ाहिरा धरना, कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक पारां मुरादबाह में पानी खोट खिलाफ़ डीसी आफीस आलो धरणो, टंडो गुलाम अली भरसां बे पानी खोट खिलाफ़ आबादगारनि जो धरणो, मुरादबाह जे पोछड़ ताईं पाणी ॾियण जो मुतालबो, कड़ियो घंवर में इमाम वाह बारगाह जागीर में पाणीअ जी शदीद खोट खिलाफ़ आबादगारनि जो, कराची बदीन रोड ते धरणो, खेबर वेझो ॻोठ पुनू हिंगोरो जे रहवासियुनि सुई कुंदर शाख में पाणीअ खोट खिलाफ़ एहतजाज, शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ।

इंटरनेट स्टोर्स पर भी दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और दोनों प्रोडक्ट साथ में परचेज करें ताकि आपको मुकम्मल खूबसूरती मिले।

0: की आवाज,
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

ठारू शाह ऐं मेहड़ मां ॿ नींगरपुर इसरार तौर गुम ॻोल्हा में मदद जी अपील। ठारू शाह जे ॻोठ फज़ल मोहम्मद बुरड़ो वासी अठे क्लास जो शागिर्द मुज़म्मिल बुरड़ो चइनि ॾींहनि खां ॾस पतो न पियो। मेहड़ वासी शागिर्द ज़मान अली पुट आसिफ़ पंवर गुज़िरियल ॾींहं खां गुम आहे। नींगर जे वालिद आसिफ़ पंवर जो चवण आहे त पुट मदरसे में पढ़ंदो आहे, ॻोल्हा में मदद कई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन माइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।
1: FM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

पॉजिटिव करनी है आपने। ऐसे बैड जो है ना वेव की जानिब नहीं जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं, पॉपिंग बबल वार्प से मुराद वो इत्मीनान बख्श अमल है जिसमें प्लास्टिक की पैकिंग शीट में मौजूद हवा से भरे बुलबुलों को दबा कर फोड़ा जाता है। और बचपन में ये आप लोगों ने भी ये मतलब किया होगा, ऐसा जैसे होता है घर वाले कोई न्यू चीज मार्केट से लाते हैं, जब अनबॉक्स की जाती है तो उसमें से वो पैकेट शॉपर वगैरह निकलता है, उसमें छोटे छोटे से बबल्स बने होते हैं। बचपन में यकीनन ये आपने किया होगा। इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात का कहना है, पॉपिंग बबल रैप यानी बुलबुलेदार प्लास्टिक को फाड़ना जहनी

इसके लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना है, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर करना है 8881 पर। और इकबाल आचार्य

लिए सोनू खान लाशारी से सुन रहे हैं बाजी नाइस शो भली कर चूं दादा तवा के थैंक यू वेलकम आप बाय कर रहे हैं वेलकम इन अवर शो थैंक यू और अब्दुल रजा कहते हैं कि खवातीन ज्यादा कीमतें कम करवाती हैं।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आहे ऑपरेशन दौरान वधीक चार दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधीक 83 थी वियो। गॾियल ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 121 थी वियो आहे।
2: कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि लोह जो बेतराफ करे वरितो। पुलिस आफिसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफ़गानी ऐं हिकु बाजोर जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जानान अब्दुल हादी उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़ग़ानिस्तान खां बलूचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। 13 सहूलतकार मुलविस हुया। रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर लोह जो बि एतराफ़ कयो आहे।
1: अमरीका ईरान विच में आमदा हरमत सां शुरू थियल छिकताण ख़त्म न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जे हिक ॿिए जी ताक़त ते मिज़ाइल हमराह। अमरीकी फ़ौज लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेनकाम मौजिब बोशर छाबार जासक कुनार्क अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम ड्रोन ऐं मिज़ाइल ताक़त ऐं बहरी सलाहियतनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पासदान ऐं इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। अपने हुरमज़ पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे।
2: ॿिन बहरी जहाज़नि ते ईरानी हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो। 8 ज़ख़्मी थिया आहिनि। गॾियल अरब इमारतनि जी दिफ़ा वारी वज़ारत मूजिब अब्न हरमुज़ वेझो ईरानी फ़ौज ॿिन बहरी ॿेड़नि खे निशानो बणायो आहे। हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो। 8 ज़ख़्मीनि मां बि 6 भारतीय ऐं 2 यूक्रेनी शहरी शामिल आहिनि।
1: दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिन था। कराची दहशतगर्द निशाने ते आहे। रेंजर्स हमले महिल सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध आलमी सड़पकारी जो मर्कज़ बणजी रहियो आहे। हुकूमत सड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणक ज़खीरो करणनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं पिया। हुकूमती कार्रवायुनि सबबि अटे जे अघ में इस्तक़ाम आयो आहे।
2: आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावला कोट में फोर्सिस ऐं शहरनि ते हमिलो। हिकु रेंजर सहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मेतियाल मीरवा में बस अॾे ऐं रावला कोट भरिसां शहरी आबादीअ ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिश कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। माहिरनि मौजूदु पाबंदी मड़ियल तंज़ीम जे हथियारबंदनि जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अनटर थी वियो आहे।
1: MQM जे कन्वीनर डॉक्टर खालिद मक़बूल सदीकी जो मौलाना फज़ल रहमान जे बयान ते सख़्त रद अमल। खालिद मक़बूल सदीकी चयो त क़ौमी मफ़ाद हर सियासी मफ़ाद खां मथां हुअण घुर्जे। पाक फ़ौज ऐं शहीदनि जे कुर्बान ते तनक़ीद करण या सवाल उथारण क़ौमी इबादत लाइ हानिकार आहे। पाक फ़ौज जे पेशेवरनि सलाहियतनि ऐं क़ुर्बाननि जे करे सिंध पाकिस्तान खे आलमी सतह ते इज़त ऐं वक़ार मिलियो आहे। वतन जे सरहदनि जे तहफ़ुज़ लाइ जाननि जो नज़रानो पेश कंदड़ शहीद क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि।
2: सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में घोटकी ज़िले में पंजाब जे ज़हरीले पाणीअ जी छोड़ ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत पारां तलब करण बावजूद आफ़ीसरनि जे पेश न थियण ते कावड़ जो इज़हार। सिंध ऐं पंजाब जे चीफ सेक्रेटरी समेत ॿियनि आफ़ीसरनि जा ज़मानत थियण जोॻा गिरफ़्तारी वारंट जारी। जस्टिस ज़ुल्फ़िकार अली सांघी ऐं जस्टिस अरबाब अली हकड़ो ते ॿधल आइनी बेंच ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी सिंध ऐं चीफ सेक्रेटरी पंजाब, फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब समेत लाॻापियल खातनि जे आफ़ीसरनि जा 50,000 रूपियनि जा ज़मानत थियण जोॻा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त छा इंतज़ामी ऐं ॿिया आफ़ीसर पाण खे अदालत खां मथां समुझनि था। ही नाज़ुक मामिलो आहे। ज़हरीलो पाणी इंसाननि तोड़े ॿी हयातियात लाइ मसलो बणिजी चुको आहे। आफ़ीसर पेश न थी रहिया आहिनि।
1: کراچی میں پرمزمت قتل تھل ڈاکٹر آکاش کیس جا جوابدار جام سوری میں گرفتار ذریعے موجب پولیس ساگر رامچند کے گرفتار کرے جانچ شروع کرے چھری مقتول آکاش کے وارسن چھو تو آکاش آخری رسم بعد کیس داخل کرایا وی ڈاکٹر آکاش کے گزرل ڈی پرمزمت کراچی میں قتل کیا وی ہو
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائی بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
4: 0331252578 6
5: جی ہاں 2315257686
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीर आजम शफा सऊदी अरब ते हमलन जी मज़म्मत, खिते जी अमुन इस्तेहकाम लाइ कोशिशू जारी रखण जो ऐलान। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं खुदमुख्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान खिते जी अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो।

0: अमरीका ऐं ईरान विच में आबनाए हुर्मुज़ सां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बोशहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया आहिनि। हमलनि दौरान ईरान जी दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बेरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बे अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। कराचीअ में रेंजर्स कैम्प ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जी मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस ऑफिसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई घरू वज़ीर ज़याल लंजार चयो त रेंजर्स कैम्प ते 4 दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो हो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तारी बशीर ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे। बलोचिस्तान में फोर्सिस जो दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ गॾियल ऑपरेशन शहबान जारी। वधीक 4 दहशतगर्द जहनम भेड़ा। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधीक 121 थी वियो।
1: मेरे अपनों के ख्याल का स्टैंडर्ड है बहुत हाई। हर मोमेंट रहता हूँ मैं पहले से तैयार, क्योंकि मेरा हर फैसला होता है स्मार्ट। जैसे गाड़ी के लिए भी मैं चूज करता हूँ कैलटेक्स हैवलीन प्रो डीएस फुल्ली सिंथेटिक APISQ, जो दे हाई एफिशिएंसी, इंजन प्रोटेक्शन और इम्प्रूव्ड इंजन क्लीनलीनेस, बैक्ड बाय 120 इयर्स ऑफ ट्रस्टेड एक्सपर्टीज। सो अपग्रेड नाउ टू कैलटेक्स हैवलीन प्रो डीएस फुल्ली सिंथेटिक APISQ फॉर दोज हु वैल्यू परफॉर्मेंस।
0: हुकूमत सीड़पकारन के बेहतर माहौल फराम करण लाइ पुरअज़म आहे। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कार्रवायुनि सबबि अटे जे अघ में इस्तेहकाम आयो आहे।

0: सिंध हाई कोर्ट सखर बेट में घोटकी जिले में पंजाब के जहरीले पानी की छोड़ खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधड़ी अदालत पारा तलब करने बावजूद ऑफिसर की पेश न थियण से सख्त कावड़ इजहार सिंध ए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी समेत बेन ऑफिसर जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी जस्टिस जुल्फकार सांगी ए जस्टिस अरबाब अली हकड़ो से बदल आइनी बेच बुधड़ी कई अदालत चीफ सेक्रेटरी सिंध ए चीफ सेक्रेटरी पंजाब फिनांस सेक्रेटरी पंजाब समेत लागापियल खातन के ऑफिसर जा पंजा पंजा हजार रुपये जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छिया अदालत रिमार्क्स डींदे इंतजामी ए बया ऑफिसर पान के अदालत का मथा समझन था ये नाजुक मामलो है जहरीलो पानी इंसान तोड़े।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान खिते जी अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ऐं ईरान विच में आबनाह हुर्मुज़ तां शुरू थियल छिकताण ख़त्म न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मेज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बो शहर चाबहार, जासक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मेज़ाइल थाकनि ऐं बहरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाह हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿिन ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो।

कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण की तस्दीक हमले के मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार दहशतगर्दन डोह जो भी एतराफ़ करे वरतो पुलिस ऑफिसर सा गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे घरू वजीर ज़ियाल अंजार चयो तो रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलों कयो हो टे दहशतगर्द अफगानी और एक बाजोड़ जो रहवासी हो रेंजर्स के मास्टर माइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो आहे एस पी सी टी डी चयो तो हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वही दहशतगर्दन में जाना अब्दुल हादी उमर फारूक उस्मान शामिल हो दहशतगर्द उस्मान के जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दहशतगर्दन के अफगानिस्तान का बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुंचाया वो है तेरह सहूलतकार मुलविस हुआ रेंजर्स हथा गिरफ्तार कारी बशीर डोह जो भी एतराफ़ किया बलोचिस्तान में फोर्सिस जो दहशतगर्दन खिलाफ गडियल ऑपरेशन शाबान जारी चार दहशतगर्द मारजी वाया ऑपरेशन दौरान मारजी वाल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वो सिक्योरिटी जरिये मूजिब बलोचिस्तान में पाक फौज एफ सी ए पुलिस गडियल ऑपरेशन जारी रखो है ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्दन के मारे वो ऑपरेशन शाबान में मारजी वाल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वो गडियल ऑपरेशन दौरान मारजी वाल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वो है दहशतगर्द मुल्क के नुकसान पहुंचाएं चाहन था कराची दहशतगर्दन की निशाने ते आ रेंजर्स ते हमले में मुलविस सब जवाबदार गिरफ्तार थी वया आहन कराची में मीडिया से गालाइंदे वडे वजीर चयो तो सिंध आलमी सीड़पकारी जो मरकज बणजी रहो आहे हुकूमत सीड़पकारन के बेहतर माहौल फराहम करण लाए पुरजम आहे कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई करे रहा आयूं हुकूमती कार्रवाई सबब अटे के अघ में इस्तेहकाम आयो आहे

0: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में हे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमरीका ऐं ईरान विच में आबनाए हुर्मुज़ तां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जे थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बो शहर चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। कराचीअ में रेंजर्स कैम्प ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो बि एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस आफ़िसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त रेंजर्स कैम्प ते 4 दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हुआ। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान खां बलूचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। कराची दहशतगर्दनि जे निशाने ते आहे। रेंजर्स ते हमले में मुलविस सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध आलमी सीड़पकारी जो मर्कज़ बणिजी रहियो आहे। हुकूमत सीड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कार्रवाइनि सबबि अटे जे अघ में इस्तहकाम आयो आहे। आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावला कोट में फोर्सिस ऐं शहरनि ते हमिलो। 1 रेंजर्स अहलकार शहीद, 1 ज़ख़्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मतियाल मेरा में बस अॾे ऐं रावला कोट वेझो शहरी आबादी ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिश कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। ॿाहिरनि मूजिबि पाबंदी मड़ियल तंज़ीम जे हथियारबंद जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अंटर थी वियो आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GAFM 90.4।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: 98 Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: कहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

अमरीका ऐं ईरान विच में छिकताण वधीक तेज़ थी वई। अमरीका जे ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। ईरान जो बि जवाबी वार। सेंटकॉम मूजिबि बो शहर चाबहार, जासक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला करे ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि तोड़े बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज बि बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में अमरीका जे अलजफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मस पार कंदड़ ॿिन ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। ईरानी क़यादत जी पॉलिसी ईरान खे मुकमल तबाहीअ जे रस्ते ते वठी वञी रही आहे। ईरानी बंदरगाहनि ऐं ईरानी कार्गो जी मुकमल नाकाबंदी लागू कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुर्मस में अच वञ ईरान खां सवाइ सभिनी लाइ आहे। आबनाए हुर्मस में तेल अॻु खां वधीक मक़दार में सप्लाई अमरीका जी फ़ौजी ताक़त सां मुमकिन थी आहे।

वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शाहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारीअ ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान खिते जी अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age ब्यूटी क्रीम।

0: 5H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।